0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर।
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: न्यू सफीर कॉस्मेटिक्स वाला थरम तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स मिला विदले जी खोल बाजार कोड़ा खटक की मोती बाजार के तासुला वाहिद कॉस्मेटिक नवीद कॉस्मेटिक लाल मामद कॉस्मेटिक नसीर कॉस्मेटिक और प्रिंस कॉस्मेटिक्स वाला सरहम जंग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स मिला विदले जी बाकी सुमंग आवाज कदा वक्त सुख पते मरगर की जमजम कॉस्मेटिक अलहरम मेगा मार्ट जमजम मेगा मार्ट अस्पताल रोड तालाश की ग्रीन वैली फार्मेसी वाला सर दौड़ा की ग्रीन पैलेस फार्मेसी कश्मीर स्वीट एंड बेकर्स औरबाद के अनान हाई फरमाल खान खाल के तासुला हक मार्ट वाला सर और मुंडा के पाक अफगान बेकरे वाला सर नसीम मेडिकल स्टोर वाला सर मैदान के अर्शद अली कॉस्मेटिक असद सुपर स्टोर वाला सर अबीबोर बाजार के कुरेश जन स्टोर पुआ जन स्टोर ताना मलखंड की बरीकोट की लाहौर कॉस्मेटिक ऊज बाजार के तासुला सलीम खान कॉस्मेटिक नसीम खान जन स्टोर ऊज बाजार ताकूर के तासुला उसामा कॉस्मेटिक और हाँ जी जाहिर सेब सर सीना शीना कॉस्मेटिक माने जिकम मशहूर दुकानदार जमुन तमाम आसमानी प्रोडक्ट मिला विदले जी बाकी जमुन आवाज का दावा पट बाजार हंगो की सुकूरी जमुन तमाम आसमानी प्रोडक्ट मिला विदले जी डी खान बनू सराय नोरंग लकी मरवत अबनु सराय नोरंग या तख्ती खिल या तख्ती नसरती शुमाली वजरिस्तान जुनूबी वजरिस्तान और बाकी सुमंग आवाज का दावा की स्वाद की सुकुरी शिरपो की सुकुरी लुनखड़ की सुकुरी तख्तबई की सुमंग आवाज सुकुरी जी कश्मीर की सुमंग आवाज सुकुरी मुजफ्फराबाद की सुमंग आवाज सुकुरी इब्टाबाद की सुमंग आवाज सुकुरी जी या से बस जुमंग आवाज दावा की पसुक पखम से की मौरिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जुमंग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स आसो पे इंतजार दीजिए इंशाल्लाह कभी वफा सा गान वफा का जुन वफा का दरसबा पर जुन दी बारिश सबब वखिस खुदी प्रोग्राम सर सासु पे खिदमत की हाजिरी गुजी सर अकीद पर इकबाल रो डॉक्टर इसरार जान ला इजाजत पर कई दलो अल्लाह फमान आसमानी कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जिंदाबाद
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है
3: प्यार की एक दुनिया लेकर
2: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में
2: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
7: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

जी नुपत याद साथ राम क्लाथ हाउस नसीम मार्केट बडग्राम और द्वीम ब्रांच दे लेडीज मार्केट बडग्राम नूर मालूम दपारा या ऑर्डर दपारा पदे नंबर हुमा राबित कवली शेख 0356-75-501 और बिल नंबर दे 0356-95-022 राम क्लाथ हाउस सासुद खादियो और रंगुनो जामेन।

0: Radio Oma Network. Mission.
1: प्यार की एक दुनिया लेकर
2: मोहब्बत समेट कर तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
3: रेडियो अमन नेटवर्क अमन।
4: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।